0: ओंकार सतनाम कर्तपुर निर्वो निर्वैर अकालमुत अजुनी सैवं गुरुप्रसाद जप आज सच सुगत सच है भी सच नानको से भी सच सच सोच न हो वे जय सच लखर चुपे चुप न हो वे जय लाए रहा लिपतार भूखिया भूख न उतरी जय वन पुरिया वर सहस्य न पलक हो था एक न चले नल के सचिया रहो ये कि पूरे तुत पल हुकम न जाए चरना नानक लिखिया नल हुकम ही हो वह न कार हुकम न के आ जाए हुकम ही हो वंजी हुकम ले वरियाई हुकम ही उत्तम नीच हुकम है दुख सुख पाए एक न हुकम ही बख्शीश हुकम है सदा बबाए हुकम है अंदर सब को बाहर हुकम न कोय नानक के हुकम है जे बुझेता होवे कहे न कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को तचने निशान गावे को गुण वर्या याचार गावे को विख्या विकम विचार गावे को शस्त्रे तनके गावे को चीले फिर दे गावे को जपे दिसे दूर गावे को वह हर हा दूर कथ न कथिन आवे तोत कथ कथ कथि कोति कोत कोत तेदा दे ले ते तत् पाए जुगा जुगंतर काय काय हुकमे हुकम चलाए राव नानक वे सेवे परवाओ सच्चा साय सच नाय वाक्या भाव अपार दे करे दातार फिर के आगे रखिए जदी दरबार मौके बोलन बोलिए जे सुंदरे प्यार अमृत वे सच नाओ वरियाई विचार खरमी आवे खपरा नदरी मुख द्वार नानक वे जानिए सब आपे सच यार थपे न जाए कि तन होए आपे आप निरंजन सोए जिनसे भी अतिम पाया मान नानक गावे गुण निदान गावे सुने मरवा क्या वाओ तू पर हर सुख ले जाए गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख वेरसमाय
1: गुरु ईश्वर गुरु गोरख भरम गुरु पर्वती माय
0: जे हो जान आखा नाही कह न कत न जाए
1: गुरु एक जे बुझाए
0: सबन जिया का एक दाता सोमे विसर न जाए
1: तेरे तिनावा जे थी सबावा विन बने के नाई करे
0: जेती से तू पाए वे का विंखे में मिल ले
1: माथ विचर अचन जवाहर माने के जय गुरु की सिख सुनी
0: गुरे के दे बुझाई
1: सब न जिया खाए के डाटा सो में भी सुन न जाए
0: जे चुक चरे अर जा और न सुनी होए
1: नव खंड विच शाने नौ चले सब कोए
0: चंगा नाव रखाए के जस किरे जगले
1: जय थी से न डर न आवे न वत न पूछे के
0: किता अंदर किता का दोषी दोस्त्रे
1: नानक निर्गुण गुण करे गुण भंतिया गुण दे
0: देह कोय न सुचे जे तिस गुण कोय करे
1: सुनिए सिद्ध फिर सुर नाथ
0: सुनिए थर थर लखा
1: सुनिए टीप लो पटा
0: सुनिए तो न सके काल
1: नानक भगता सरा विगस
0: सुनिए दू पाप का ना
1: सुनिए ईश्वर बर मैं इन
0: सुनिए मोत सलाम मंदा
1: सुनिए जोग जुगत तन बेद
0: सुनिए शत सिमरत बेद
1: नानक भगता सरा विगस
0: सुनिए दू पाप का ना
1: सुनिए सत संतो कियान
0: सुनिए ईश्वर बर सुनिए मोत सलाम मंदा
1: सुनिए लागे सहज दियान
0: सुनिए
1: नो सुनियस
0: पदर
1: भरग पावे मान
0: नानक भगता सदा विगास
1: नानक भगता सदा विगास
0: सुनिए तू पाप का ना
1: सुनिए सरा गुना के गा
0: सुनिए शिपित पतिशाओ
1: सुनिए अंधे पावे रो
0: सुनिए हाथ वे आसकाओ
1: नानक भगता सरा विगास
0: सुनिए तू पाप का ना
1: माने की गात कहे ना जाए
0: जे को कहे कछे पछताए
1: खगत कलम न लिखन हार
0: माने खव करम विचार
1: ऐसा नाम रंजन होए
0: जे को मन जाने
1: माने सुर हुवे मन बुद
0: माने सगवन राके सुत
1: माने मोहे छोटे न खाए
0: माने चमके सब न जाए
1: ऐसा नाम निरंजन होए
0: जे को मन जाने मन खोए
1: माने मार हक न पाए
0: माने पत्य पर गए जाए
1: माने मार न चले
0: माने धर्म से ती संबंध
1: ऐसा नाम निरंजन होए
2: Jacob man jani man koi
1: mane bhave mukdwar
2: mane parvare sadar
1: mane tare tare urset
2: mane nanak bhavanabik
1: asana laranjan hoy
2: Jacob man jani man koi
1: panch paradan
2: panche bhave darge man
1: panche sohe darajan
2: panche ka guru ikdian
1: Jacob kahe kare
2: vichar karte ke karne nehismar Santok ta prakya jinsut.
1: Jacob uche hove sachyar.
2: Davle uparke tabar.
1: Darti hor pere hor hor.
2: Tis te bar tle kavanjor.
1: Jija ranga kena.
2: Sabna likya vorti kalam.
1: Eho lika jane koe.
2: Laka likya keta hoi.
1: Keta tan suaria.
2: Keti da chane konkut.
1: Kita pesao eko kavao.
2: Tis te hoi lakdariyao. Varina Java Ikavar Tum Sarav Slamet Nirankar
1: Asanka Japa Sankabar
2: Asank Puja Sanktap Tau
1: Asank Rat
2: Mukvedbar Asank Chogman Rahi Udas
1: Asank Babat Gungia Richar
2: Asank Satya Sanktatar
1: Asank Surma Baksar
2: Asank Mon Livlaitar Varina Java Ikavar Tum Sarav Salamat Nirankar
1: Asanka Mara Kandakor
2: Asank Chor Haramakor
1: Asanka Mara Karajajor
2: Asank Gavar Hatia Kamai
1: Asanka Papi Pakarajai
2: Asank Kriyar Kare Farai
1: Asanka Malay Chumala Bakai
2: Asank Nindak Sir Kare Bar
1: Nanak Nich Kare Bichar
2: Varina Java Ikavar Tum Sarav Salamat Nirankar Pani dote asanka nava sankatav asanka hai sir bar hoi akri gyan gi kungao akri sir sanjog vakan jipur mai tiv tiv pai ven nave nahi kotao Varin Ajava Ikvar
1: Jotur Bhave Sai Balikar
2: Tum Sarav Salamat Nirankar
1: Mariya Hatare Tande
2: Pani Dote Utreske
1: Mutipaliti Kaparoe
2: Desa Bun Leyo Doi
1: Mariya Mapapa Kesam
2: Odope Nave Kerung
1: Puni Papi Akanai
2: Karkar Karna Likle Jao Nanak hukmi ava jao. Jacob ave tokaman.
1: Suni hamani aman kita bao.
2: Antar gatirit mauno.
1: Sagun tere menae koe.
2: Bingun kite bagat no hoi.
1: Suwasrat bani barma.
2: Sat suhan sadaman chao. Kavan siruti mau kavan jiroa agar. Vakat na paya kariya jilakan lekran.
1: Tidhvarina jogi jane rutmana koe.
2: Ja karta sirti kausaje ape jane soe.
1: Kiv karaka kiv salai kio arini kiv jana.
2: Nanaka kan sabko ake iktu iksyana.
1: Vada saya vadinai kita jaka hove.
2: Nanaka jeko apal jane age jana soe. Orik orik bautak ke ved ken ik bat.
1: Sahasatai kahen kateba asabuita.
2: Lekka hoita likye, leke hoi vinas. Salahi salai iti suritna paya. Samun sha sultan girhasati maldan. Antana Sifti Kenna Ant
1: Antana Karune Dena Ant
2: Antana Vekan Sinana Ant
1: Antana Jape Kiaman
2: Antana Jape Kita Akar
1: Antana Jape Parvar
2: Ant Karan Kete Bilai
1: Take Antana Pahe Jai
2: Eho Antana Jane Koi
1: Lahota Kaya Lahota Hoye
2: Vada sai bucha tau.
1: Uche uparu chana.
2: Evar ucha hove koi.
1: Tisuche ko jane soi.
2: Jevar ap jane ap ap.
1: Nanak nadri karm nirai.
2: Bauta karm kya na jai.
1: Vada da ta te unat mai.
2: Kete mange jora par.
1: Kete kanat nahi vichar.
2: Kete kap tu te vekar.
1: Kete
2: mure kai kai.
1: Kete du buk sadmar.
2: Ebida tri da tar.
1: Vande klashi vane hoi.
2: Hor akna sakke koi.
1: Jeko kai kata pare.
2: O jane jetya mai kai.
1: Ape jane ape de.
2: Ake shibi kei kei.
1: Jis no bache sepitsila.
2: Nanak pachai pachau. Amova pariyamo bandar.
1: Amolave amolajar.
2: Amol bai amol samai.
1: Amol dharam amol divan.
2: Amol tol amol parvan.
1: Amol bakshish amol nishan.
2: Amol karam amol farman.
1: Amol amol aki anajai.
2: Aki akre helevlai.
1: Aki vipak puran.
2: Aki pare kare bakyan.
1: Aki varepe ake.
2: Aki gopi te govind.
1: Aki ishra.
2: Ake kete kite bud.
1: Ake dara vake de.
2: Ake surna munjan sev.
1: Kete ake akanapai.
2: Kete keke utu jai.
1: Kete kete hor kare.
2: Ta akna sake ke ike.
1: Che verbave te verhoi.
2: Nanak jana sacha soi.
1: Che ko ake bo vikar.
2: Ta likya sir gavara gavar.
1: So dar ke ha so bar ke.
2: Vajay nara neka sanka kete vavan hare.
1: Kete rakri silke kete gavan hare.
2: Gave tuno pan pani besantar gave raja dharam duare.
1: Gave chitupad likjane liknik dharam vichare.
2: Gave isha brahma devi swans rasvare.
1: Gave nindarasana vete devar teodanale.
2: Gave sid samadhi under gavan sadvichare. Gavana Pandit Paran Raki Sir Juk Juk Veda Nale.
1: Gave Mami Aman Mohan Surakamach Piyale.
2: Gavan Ratan Upai Tere Ad Satirat Nale.
1: Gave Jod Mahavansura Gave Kani Chare.
2: Gave Kan Mandal Barbanda Karka Rake Dare. Hor ke te kaven se mechit na aven nanakya vichare. Havi hosi jaina jasi rachna jinra chai.
1: Rangi rangi bati karkar jinsi maya jinu pai.
2: Karkar deke kita apana jutisti variyai. So pacha sha patsaib nanagrahan razai. Kenta kau kraya kaya juga tanda parti. Ades si se ades. Bugit gyan dia bandaran gat gat vajanan. Sanjog vi jog due karchala ve leke ave bag.
1: Ades ti se ades.
2: Ade nil anaran ha chug chug eko ves.
1: Eka maya juga piyaya tinchale parvan.
2: Ek sansari ek bandari ek laidi ban.
1: Jiv tis bave teve chalave jiv ove praman.
2: O veke ona narana ave bauta evedan. Adanil anadanaha chuk chuk echo ves. Jokich paya swikavar. Nanak sachi ki sachi kar. Adanil anadanaha chuk chuk echo ves. Lak lak gera akye eknam jagdish. Sungala akash ki kita airis.
1: Nanak nadri paye kure kure tis.
2: Akana jor chupena jor. Jorna jiva marna jor. Jorna sorti gyan bichar. Jisha jor karveke soi. Rati ruti titi var. Tisvich darti tapraki darum sal. Tin ke nam anek anant. Sacha ap sacha darbar. Nadri karam pavanashan. Nanakeya jape jai. Gyan kan ka ako karam. Kete parme gare kariya rup rang keves. Kete inde chansur kete kete mandal des. Kete dev danamun kete kete ratansmund. Ketya surti seve kete nanak antana an. Tite nad benod karanan. Tite kari kari bhotanu. Jeko khe piche pichtai. Tite kari asra asra kisad. Tite horna koi hor. Tite. Tinme ram rea barpur. Take rup na katne jai. Chinke ram basa man mai. Kara anan sacha man soi. Kar karveke nara nahal. Jeko kate ta antra ant. Jiv jivakam tive tiv kar. Nana katna kara asar. Aheranamad vid hatyar. Banda bau amrit tit al. Jinko nara karam tinkar. Shlok. Divis rato idaya daya kele sagala jagat.

नानक थे मुकुज लई खेती छुट्टी चिन्नी नाम दियाया गै में शक्त गाओ नानक थे मुकुज लई खेती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Good.